ना फिर परेशानी माहें। ए जो दुनिया सहर मेला दस्तगीरी ना है। हे बंदे तू हर रोज़ अपने दिल अपने हिरदे विच उस परमात्मा की भाल कर ते एवें घबराहट विच ना भटकदा फिर। ये दुनिया एक जादू का तमाशा है ते जिवें जादू दे तमाशे चों कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा उसी तरह इस जगत विचों भी तैनू कोई चीज़ प्राप्त नहीं होने वाली। बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदाए। हे भाई बेअर्थ बहस करन लई बेदां कतेबां दे हवाले दे के एवें फजूल गल्लां करन नाल दिल दा सहम दूर नहीं हुंदा। तुसी अपने मन नूं पलक भर भी टिका लो ता तुहानू सभना विच रब वसदा दिस पएगा। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहें हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूर्त ना है। बेसमझ लोग दूसरे धर्मां दीआं पुस्तकां पढ़ पढ़ के कि इन्हां विच जो लिखिया है वह झूठ है खुश हो के बहस कर रहे हैं पर सदा थिर रहन वाला परमात्मा सबना जीआं विच वस रहा है। ना तो वह सतमें असमान ते बैठा है ते ना ही कृष्ण दी मूर्ति विच है वह तो सर्व व्यापक है। असमान म्याने लहंग दरिया गुसल करदन भूत कर फकर दायम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। सतमें असमान विच बैठा समझण दी थां ते हे भाई ओ प्रभु रूप दरिया तां अंते करन विच लहरां मार रहा है तू उस विच इशनान करना सी सो सदा उस दी बंदगी कर ज्ञान रूपी ऐनक ला के वेख ओ हर थां मौजूद है। अल्लाह पाकं पाक है शक करो जे दूसर होए कबीर कर्म करीम का ओ करै जाने सोए। इस गल विच कोई शक नहीं कि परमात्मा सब तो पवित्र हस्ती है। मैं इस गल विच तां शक करां जे उस वर्गा कोई होर भी होवे तां। हे कबीर ओ मनुख ही ये गल समझ सकता है जिसनूं वाहिगुरु समझण योग कर देवे। ये बख्शिश उस परमात्मा दे अपने हथ विच है इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे।

पुट ते पीछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा है जदो समय दा चक्कर चलदा है जदो समय दा चक्कर चलदा है लेखा लिखिया मेट न सकदा हो लेखा लिखिया मेट न सकदा।

0: थोड़नी वो कट्ठे सेलिब्रेट करांगे, कट्ठे सेलिब्रेट करांगे, तेरा बर्थडे है ताइयों मैं बुलावा।
1: हाँ हाँ हाँ

0: क्या बात है
1: तेरी
0: भाई।
1: फोटो वेख वेख होके रहा परदी, तू की जाने तेनू वे मैं किन्ना मिस करदी। तेरी फोटो वेख वेख होके रहा परदी, तू की जाने तेनू वे मैं किन्ना मिस करदी।

0: पढ़ा है मेरी जान जर से पढ़ा है। तू बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है।
1: बाजी
0: वो फिर अगर
1: बाजी।

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। आदमी तू अगर आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है ये किस काम का। जिंदगी का सफर ये सुहाना बना,

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

0: जी दी रचना तो बाद हूँ मैं फरीदकोट बस्ती साड़ी शहर है सुखविंदर कौर जी सदा देन जा रहा वो आन ते अपनी रचना लैके हाजिर हूँ। सुखविंदर कौर जी इस बार साड़े कवि दरबार के जो आ रहे हैं वह बठिंडा के शायर कुलदीप सिंह मंगी जी की एक गजल लैके हाजिर हो रहे हैं। सुखविंदर कौर जी दुआबा रेडियो के हफ्तावारी कवि दरबार के निघा स्वागत है।
1: दोस्तों मैं सुखविंदर कौर फरीदकोट आप जी की नज़र मालवे की शान बठिंडे जिले का माण कुलदीप सिंह बंगी जो पेशे वजो एक अध्यापक ने उन्होंने लिखी हुई गज़ल आप जी सामने पेश कर जा रही हूँ। एक वारी जे झूठा ही तू दे जांदा तेरे वास कदे

0: है। शुक्रिया जी।
1: सुत्यो हफ्ता भरी का महफल दे विच हुण मैं थोड़ी जान पछाण पंजाबी दे नवें उभर दे शायर तलविंदर शेरगिल जी नाल करवाउण जा रहा। तलविंदर शेरगिल जी जिला शहीद भगत सिंह नगर दी तहसील बंगा दे नेड़े वसदे पिंड गुणा चौर तो हन। बहुत वधिया शायर ने। इहदे नाल दी नाल उहनां दे इक लिखे हुए गीत पंजाब सिआं नूं साडे गायक कृष्ण ही उन्हें गाया है, जिहड़ा इस वेले पंजाबी दे स्रोतियां दी बड़ी पसंद बनिया होया है। इहो जिहे वधिया रचनावां दे रचनहारे तलविंदर शेरगिल नूं असीं दुआबा रेडियो दे मंझे निगाह जी आया कहिंदे हां।
2: हिफाजत अपने साहां दी एदां कर रहे हां, हिफाजत अपने साहां दी एदां कर रहे हां। जदों भी जंग होई है सदा ही कर रहे हां, जदों भी जंग होई है सदा ही कर रहे हां। तुहानू वहम है एवें अजल तों सौं रहे हां, तुहानू वहम है एवें अजल तों सौं रहे हां। असीं तां नींद विच खाबां दी राखी कर रहे हां, असीं तां नींद विच खाबां दी राखी कर रहे हां। कुताही तां पता लगे किवें रुस्से ने दरिया, कुताही तां पता लगे किवें रुस्से ने दरिया। असीं तां खारियां खूहां चों पाणी भर रहे हां, असीं तां खारियां खूहां चों पाणी भर रहे हां। किसे वी बुत घाड़े ने असानू रब ना कीता, किसे वी बुत घाड़े ने असानू रब ना कीता। जुगां तों ही असीं राहां च पए पत्थर रहे हां, जुगां तों ही असीं राहां च पए पत्थर रहे हां। मिले वरदान ही कारण असाडी मौत दे ने, मिले वरदान ही कारण असाडी मौत दे ने। खुशामद रब दी करनों तदे तां डर रहे हां, खुशामद रब दी करनों तदे तां डर रहे हां।
1: ਜਿਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਮ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਵੱਲਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਗਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
3: ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਜਗਦੀਪ ਹਸਰਤ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗਜ਼ਲ। ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਤਰ ਗਿਆ,

सब दरिया खेस कब राय सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी, गद्दे बेड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

होई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई पटोले।

0: खंडाई चुकलती ये जाके जिथे लेखा चोग खंडाई जा सौरे करती ये ले जा लड्डा परी विदाई जा सौरे करती ये ले जा लड्डा परी विदाई। धन्यवाद जी।
1: हरजीत रूपी तो बाद हुण मैं जिला जलंधर दी तहसील फलौर दे इतिहासिक पिंड दसांझ कलां दे शायर राम प्रकाश टोनी जी नूं सदा देण जा रहे हां कि आन ते अपनी रचना जिहड़ी आ साडे स्रोतियां दे नाल सांझी करन। ते ओह लिखदे ने जिंदा जिस दी जमीर है। राम प्रकाश टोनी जी तुहाडा स्वागत है।
2: सत्कारयोग साथियो, मेरी रचना है जी जिंदा जिस दी जमीर है। जिंदा जिस दी जमीर है आदमी ओ अमीर है। कीते जिसने बड़े कपड़े कीते जिसने बड़े कपड़े बनया ओ कल वजीर है बनया ओ कल वजीर है। अमीर सी सभ्याचार साडा अमीर सी सभ्याचार साडा गायकां कीता लीरो लीर है गायकां कीता लीरो लीर है। पहला पाले घोगड़ बिले पहला पाले घोगड़ बिले हुण सीने मारदा तीर है हुण सीने मारदा तीर है। दुध तो सारा डेरी जावे दुध तो सारा डेरी जावे ताइयों काना शरीर है ताइयों काना शरीर है। सुधर जांदे बड़े बड़े सुधर जांदे बड़े बड़े डंडा लुच्चियां दा पीर है डंडा लुच्चियां दा पीर है। घर घर रांझे जमदे ने घर घर रांझे जमदे ने पिटदी फिरदी हीर है पिटदी फिरदी हीर है। कातल दे गल फुल पैंदे कातल दे गल फुल पैंदे सच दे अखी नीर है सच दे अखी नीर है। असीं इक्को मां दे जाए हाँ असी इको माँ दे जाए हाँ बिच मजमा पाई लकीर है बिच मजमा पाई लकीर है। टोनी जो हक्का ले लड़दा है टोनी जो हक्का ले लड़दा है दसांझ ओ बहादुर वीर है दसांझ ओ बहादुर वीर है। धन्यवाद जी।
1: राम प्रकाश टोनी तो बाद हुण मैं कपूरथला बस दी साडी शायरा रजनी वालिया नू कामे फल दे विच सदा देण जा रहे हां। रजनी वालिया जी अपनी कविता विच लिखदे ने मिट्टी नाल मुहब्बत हो गई। आओ प्यारे श्रोते देखिए ओ किवें मिट्टी नाल मुहब्बत करदे ने। रजनी वालिया जी तुहाडा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है।
3: नमस्कार जी, मैं रजनी वालिया कपूरथला तो अपनी रचना लेके हाजिर हां मिट्टी।

अपने खातर दुनिया मर दी मिटदी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।